0: था संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: रेडियो था संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन